और मैं तस्वीर से हर वक्त कहता हूँ कि जा, चली जा यहाँ से, पीछा मत कर मेरा। लेकिन हर बार उसका चेहरा ऐसे उभरता है मेरे सामने जैसे बाद में मुझे चांद निकल आया।